0: कथना कथि नया वै तोट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट
1: दे थक पाहे जुग जुगंतर खाही खाही।
0: हो

0: तीरथ मल्ला
1: सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए
0: सास्तात बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ
1: हुण सुवेला भगत कवण कवण थित कवण वार हेल न पाईया पंडती जी हुए लेख पुराण
0: पायो कादियां जे लिखन लेख पुराण।

0: छुटै संसार।
1: जे सत जोर कर वेखै सोए नानक तुम नीच न कोए।
0: अग्नि पाताल
1: तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जीए अजोग।

0: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सच्चिदानंद सर्वंग परनासी अनुपे रूपे समस्त निवासी
0: सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्दर गंग अगंग ओंग हर्ता
1: परम परम परमेश्वरं पुष्पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
0: अशेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त स्थामंग तेरा जोर चाचरी छंद
1: जले हैं थले हैं बीत हैं अबे हैं
0: प्रभु हैं जू हैं देश हैं
1: आगादे आबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने
0: नमस्त्वंग
1: काले नमस्त्वंग पाले नमो सर्वदेशे

0: चतुर्चक्र करता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दानी चतुर्चक्र जाने
1: चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र पर्ती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले
0: चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासी चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दाने ना सत्र ना मित्र ना परमंग ना पित्र ना चित्र ना मित्र परे है पवित्र
1: भगवती शांत
0: वह प्रसाद कथ दे किया श्री दिस गया भज भेस गया गंज कर्मे गया भज भरमे के राजन प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा वर्ण
1: है कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है
0: के आद आदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के अधीन
1: है रोजी रजाई के रही मेरे हाय के पाक

0: ये सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोग है
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: सर्वत्र मानिए सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है
1: के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
0: सर्वं कली में के फर्म फही में के आकल अलामे के साहेब कला में
1: के उसमें वजू है तमाम लरजू है में सलसलाम में सलीकत मुदाम में तमी जल तमा मैं रजूल निदान है हरी फुला जी मैं रजाई कुछ यकीन है निरुक्त स्वरूप है त्रमोत बभूत है प्रयुक्त प्रभा है।

0: करुणालय हर काले है, कल खंडन है, मैं मंडन है,
1: जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है,
0: जित के तरन जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है,
1: सर्वंगपर है, सर्वंकर है, सर्पासे है, सर्वनाश्य है,
0: करुणा कर है, विसंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है,
1: मंडस है, कल खंडस है, परते पर है, करुणा कर है,
0: पाजा पाजा पै थपा था पै कृता कृता मृत है, मृत है,
1: मृत है, करना कृत है, कृता कृत है, तरनी धृत है,
0: अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृता।

0: रहे प्यासा।
1: तुम्ह शाड कोई हमर ना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं।
0: सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है।
1: आप हाथ ने मुझे भरी है, मरण काल का त्रास नवरी है।
0: जो सदा हमारे पच्छा श्रीय सो जो करियो रख।

0: जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन पुजायो
1: आदंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
0: नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी
1: शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत
1: सब पर कृपा दिस कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक ही पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
0: जाबुद कर करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा
1: कर करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हो
0: जेते बदन शेष सब तार आप अपनी बूझ उचार
1: सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम
0: निरंका निर्विका निरंबु आदि अनिल अनादि असंभव
1: मूड चारित पेता जाको पेवन पावा।

0: आप रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संग रो,
1: दुश्चिते उठ पति अत पाता, सकल मलेश करो रण काता,
0: जे अस्तुर तब सरनी पर तिनके दुष्ट दुख धवै मरै,
1: और जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट

0: ये कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया
1: जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया
0: प्रसादी हर मन बसया पूरब लिखिया पाया
1: कह नानक ई शरीर परवान होआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया
0: ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जोत तरी हर बिन अवर न देखो कोई
1: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया
0: एहो बिस संसार तुम देख दे एहो हर रूप है हर रूप नदरी आया
1: गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई
0: कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलिए देव दृष्ट होई
1: ए श्रवणो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए
0: साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी
1: जत सुनी मन

0: अत पारी
1: हर को नाम खन माहे उदारी
0: अनक पुने चरण करत नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पाप करे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक पावो सुख नेरे
0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोरी वंदना परे
1: हर का नाम जपत निस्तरे
0: अनक मा रंग तिख ना बजावे
1: हर का नाम जपत अकावे
0: जेह मार्ग एहो जात केला
1: हर नाम संग होत सहेला
0: ऐसा नाम सदा ते आई है
1: नानक गुरमुख परम गत पाई है
0: छूटत नहीं कोट लख वाही
1: नाम जपते पार पराही
0: अनक विगंजे है आए संगार
1: हर का नाम तत्काल उदारे
0: अनक जोन जन मैं मर जा
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: हौ मैला मल कबू ना तोवे
1: हर का नाम कोट पाप खोवे
0: ऐसा नाम जपो मन रंग
1: नानक पाई है साध के संग
0: जेह मर के गने जाहे ना कोसा
1: हर का नाम हुआ संतोषा
0: जह पेंडे महा अंध गवारा
1: हर का नाम संग गुजारा
0: जहां पंथ तेरा को नास जानू
1: हर का नाम ते नाल पछानू
0: जह महा भयान तप्त बहु काम
1: हर के नाम की तुम ऊपर शाम
0: जहां त्रिखा मन तुझ कर खै
1: नानक हर हर अमृत।

0: मन को मुक्त जुगत
1: हर के नाम जन को तृप्त भुगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जपत का पर न पंग
0: हर का नाम जन की बड़ियाई
1: हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भोजोग
1: हर नाम जपत का सुनाई वियोग
0: जन राता हर नाम की सेवा
1: नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन के मालिक जीना
1: हर तन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन के ओठ सतानी
1: हर प्रताप जन अवर न जानी
0: ओत पोत जन हर रस राते
1: सुन समाद नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का

0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
1: शास्त्र सिमृत विज्ञान
0: योग अभ्यास कर्म तर्म क्रिया
1: सकल त्याग मन मदे फिरिया
0: अनेक प्रकार किए बहु जतना।

0: अचार पदार्थ जे को मांगे
1: साधजन की सेवा लागे
0: जे को अपना दुख मटावे
1: हर हर नाम हृदय सतगावे
0: जे को अपनी शोभा लोरे
1: साध संगे होमे छोरे
0: जे को जन्म मरण ते डरे
1: साधजन की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: साध संग जाका

0: जावे
1: जो ठाकुर सा सदा हजूरे
0: ता कोई अंधा जान दूरे
1: जां की टहल पावे दर्ग है मान
0: जिसे बसारे मुगद जान
1: सदा सदा एह भूलन हार
0: नानक राखन हार अपार
1: रतन त्याग को डी संग रचे
0: सा छोड़ चूर संग बचे
1: जो छड नासो अस्तर कर माने
0: यो बनसो दूर पराने
1: छोड़ जाए तिसका शर्म करे
0: संग सहाय तिस पर हरे
1: चंदन लेप तारे तोए
0: गर्दन प्रीत पासुन संग होए
1: अंध कूप में पतत बिकराल
0: नाने काढ लियो प्रभ दयाल
1: करतूत पशु की मानस जात
0: लोक पचारा करे दिन रात
1: बार पेख अंतर मल माया
0: शब्द नाए कश करे छाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
0: अंतर व्यापे लोभ सुहान
1: अंतर अग्न बाहर तन स्वा।

0: विषन पद गावे गोंग
1: यतन करे तो भी सर्पंग
0: कै पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं होत हुआ सुगवन
0: करतार करना में दीन बेनती करे
1: नानक तुम्हरी कृपा करे
0: संग सहाई सो आवे नाचीत
1: जो बराई ता सियो प्रीत
0: बलुआ करे ग्रह बलुआ के ग्रह पीतर वसे
1: अंध केल माया रंग रसे
0: दृढ़ कर माने मन है परती
1: काल में आवे मूढ़े चीत
0: गैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ बकार महालोच

0: एक वाचन कान बखोट गवावे
1: एक पीना दे दस पी हिरले
0: तो मूड़ा को कहां करे
1: जिष्ठा करस्यो नाही चारा
0: ताको कीजे सद नमस्कारा
1: जाके मन लगा प्रमीठा
0: सर्व सुख ता

0: रस
1: अपनी मान काश बहर सावले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही खोवे
0: विश्वास न होवे
1: जिसकी वस्तिस आगे रखे
0: राखी आज्ञा माने माथे
1: उसते चौगन करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दयाल
1: अनक पात माया के हेत
0: सार पर होवत जान अनेत
1: बिरकी छाया स्यो रंग लावे
0: ओ बिन से ओ मन पछतावे
1: जो दिसे सो चालन हार
0: राखियो होते अंध अंधार
1: बताओ स्यो जो लावे ने
0: ता कोई हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन तन कटंब सवाया
0: मिथ्या हुमे ममता माया
1: मिथ्या राजो बंतन मार
0: मिथ्या काम क्रोध बिकरार
1: मिथ्या राथास्ति आस्व वस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
1: मिथ्या त्रो मोह अवमान
0: मिथ्या आप से ऊपर करत गमान
1: अस्त्र भक्त साध की शरण
0: नानक जप जा जीवे हर के चरण
1: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्र रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजनान स्वाद
1: मिथ्या चरण पर उपकार को तावे
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
1: मिथ्या तन ही पर पुकारा
0: मिथ्या बास लेत पुकारा
1: बिन बुझे मिथ्या सा पै
0: सफल दे नानक हर हर नाम ले
1: बिरथी साकत की आर जा
0: साच बिना के होवत सूचा
1: बिरथा नाम बिना तन अंद
0: मुख आमद ता के दुर्गंध
1: बिन सिमरन दे रहन बिरथा बिहाय
0: मेघ बिना जो खेती जाए
1: कोविद भजन बिन बिरथे सब काम
0: ज्यो कारपन के नरार्थ दाम
1: ज्यो किरपन के नरार्थ दाम तन तन ते जन जह कट वस्यो हर नाम
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहत अवर कश अवर कमावत
0: माने प्रीत मुखो गंड लावत
1: जानन हार प्रभु परवीन
0: बार पेख न काहू पीन
1: अवर अवदेश आप ना करे
0: आपत जापत जन में मरे
1: जिसके अंतर बसे निरंकार
0: जिसकी सीख तरे संसार
1: जो तुम पाने तीन प्रभु।

0: अनाथ निरा
1: पाप से आण सकलते रहत
0: सबको जाने आत्म की रहत
1: जिस पावे तिस लय लाल लाए
0: तनंतर रिहा समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी
0: निमक निमक जप नानक हरी श्लोक
1: काम करो।

0: जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
1: ठाकुर को रखवन माहे
0: जेह प्रसाद सुगंध तन लावे
1: जिसको सिमरत परम गत पावे
0: जेह प्रसाद बसै सुख मंदर
1: जिसे त्याए सदा मन अंदर
0: जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: जेह प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याए त्या बन जोग
0: जेह प्रसाद पाठ

0: तू सब को माने
1: मुख ताको जस रसन बखाने
0: जेह पर सातेर रहता धर्म
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दर गह मन पावे
1: नानक पासे ती का जावे
0: जेह पर साद आरोग कंचन देही
1: लेवला बहुत सराम स्नेही
0: जेह पर सातेर ओला रहता
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जेह पर सातेर सगल सिद्ध ठाके
1: मन सानी पर ठाक प्राप्त ताके
0: जेह पर सातुज को ना पहुँचे
1: मन सा सा सिमरो प्रभुचे
0: जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
1: नानक ताकी भगत करे
0: जेह प्रसाद आपूखन पहरी जय
1: मन से सिमरत क्यों आलस कीजे
0: जेह प्रसाद अस हस्त असवारी
1: मन से प्रभु को कबू ना बिसारी
0: जेह प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख प्रोहे प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: ऊठ बैठ सकते

0: की गत होए।
1: नानक जाप जपे जब सोए,
0: आप जपाए जपै सो नाम,
1: आप गवाए सो हर गुण गावो,
0: प्रभु कृपा ते होए परगास,
1: प्रभु दया ते कमल बगास,
0: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए,
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए,
0: सर्वन दान प्रभु तेरी माया,
1: आपु कछु न किन्हु लिया,
0: जित जित लाभ तित लगे हर नाथ,
1: नानक इनके कछु न हाथ। श्लोक
0: आगम अगाध।

0: साधके संग मुख उजल हो,
1: साध संगमल सगली खोत,
0: साधके संग मिटे अभिमान,
1: साधके संग परटे सो ज्ञान,
0: साधके संग बुझे प्रभ नीरा,
1: साध संग सब होतन वेरा,
0: साधके संग पाए नाम रतन,
1: साधके संग एक ऊपर जतन,
0: साधकी महिमा बरने कौन परानी,
1: नानक साधकी शोभा प्रभ माहे समाने,
0: साधके संग अगोचर मिले,
1: साधके संग सदा पर फुले,
0: साधके संग आवेह बस पंचा,
1: साध संग अमरस पूंचा,
0: साध संग होए सब की रेन,
1: साधके संग मनोहर बैन,
0: साधके संग न कत हूं तावे,
1: साध संग असर मन पावे,
0: साधके संग माया ते पिन,
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न,
0: साध संग

0: साध के संग नहीं होता,
1: साध के संग तजे सब आप,
0: आपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु बने आए,
0: साध के संग ना कब हूं तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग वास्ता गोचर लह,
1: साधु के संग अजर सह,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग दृढ़े सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम नितान,
1: नानक साधु के करवान,
0: साध के संग सब कुल आधार है, साधु के संग सो तन पावे,
1: सबको बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग शोभा सुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्वथान गम,
1: नानक साध के संग सफल जनम,
0: साध के संग नहीं कछ काल,
1: दर्शन पेड़ तो होत निहाल,
0: साध के संग कलुखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग इहा उहा सहेला,
1: साध संग बिसरहत मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग न व्यर्थ जावे,
0: पार ब्रह्म साध हृदय वसे,
1: नानक उदरे साध सुन रसे,
0: साध के संग सुनो हर नाम,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मन ते विसरे,
1: साध संग सर पर निस्तारे,
0: साध के संग लगे प्रम मीठा,
1: साधु के संग कट कट डीठा,
0: साध संग पे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पे ही हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पेटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जाने,
1: जेता सुने ते ताब ख्याने,
0: साध की उपमा ते गुंते दूर,
1: साध की उपमा रही पर

0: कह गरीबी समाहा।
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार अमाहा।
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा।
1: ब्रह्म ज्ञानी ले ताप तबंदा।
0: ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो पला।
1: ब्रह्म ज्ञानी सो पर पला।
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार।
0: ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग।
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग।
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार।
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सा जागत।
1: ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध त्यागत।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद।
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद।
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता।
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत।
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत।
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव।
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई।
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाये।
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे।
1: ब्रह्म ज्ञानी के सब मन माहे।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद।
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए अध्याख।
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत कौन बखाने।
1: ब्रह्म ज्ञानी की कथ ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता।
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बताता।
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ।
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार।
1: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी।

0: प्रसाद विख्या पर हर
1: मन की वासना मन ते ठरे
0: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: विष्ण की माया ते होए पिन
0: कर्म करत होवे नह कर्म
1: जिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भक्त कीर संग राचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
1: नानक को वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्यागे दुष्ट का संग
0: मन ते विंसे सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: जिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
0: हर के चन हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन पर बोधे
1: राम नाम अंतर में सोधे
0: राम नाम सार रस पीवे
1: पंडित के अपने जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: पंडित फिर जो न आवे
0: वेद प्राण सिमरत बूझे मूल
1: सुख मैं जाने असूल
0: चौबर ना को दे उपदेश
1: नानक पंडित को सदा देश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
1: चौबर ना में जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गत

0: कर कृपा अंतर और तारे
1: बस प्रेत मुग्ध पाथर को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण गावा
0: काहू जुगत किते ना पाये धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तोर कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदरी आया
1: दास संतन पाए तिन पाया
0: सदा निकट निकट हर जान
1: सो दादर के परमान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: दास को सब सोजी परे
0: सगल संग आत्म उदास
1: ऐसी जुगत नानक राम दास
0: प्रभु की आज्ञा आत्म हतावे
1: जीवन मुक्त सो कहावे
0: तैसा हरक तैसा उस सोग
1: सदा नांते नहीं वियोग
0: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
1: तैसा अमृत तैसी बिखाटी
0: तैसा मान तैसा अभिमान
1: तैसा रंग तैसा रजान
0: जो वरताए साई जुगत
1: नानको पुर के ये जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
1: जे जित का राखे तैसा तिन नाओ
0: आपे कन करावन जोग
1: पावे सोई फुन होग
0: पसरियो आप होए अनंत तरंग
1: लखन जाए पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मत दे तैसा प्रगास
1: पार ब्रह्म करता बना

0: तीर्थवासी
1: कई कोट बन ब्रह्म अदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट तपीश्वर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान तारे
1: कई कोट कब कब विचारे
0: कई कोट नवतन नाम ते आवे
1: नाने करते का अंत न पावे।

0: कई सर्प पाए,
1: कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
0: कई कोट पवन पानी बह संत,
1: कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट सस्यर सूर नखत्र,
1: कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र,
0: सगल समग्री अपने सूत तार,
1: नानक जिस पावे तित निस्तार,
0: कई कोट राजस तामस सातक,
1: कई कोट वेद प्राण सिमर अर सात,
0: कई कोट किए रत्न समुंद,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट की ए चिर जीवे,
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
0: कई कोट च किनर पसाच,
1: कई कोट पूत परे सुकर मरगाच,
0: सबते नेरे सबूते दूर,
1: नानक आप अलिप्तरे हा परपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक स्वर्ग न

0: कोए,
1: आपे आप नानक प्रभ सोए,
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
1: तिन होवता तिन प्रगास,
0: कई कोट तत के वेते,
1: सदा निहारो एको नेत्र।

0: रात
1: कबू महाक्रोध विकराल
0: कबू सर्ब की हो तरवाल
1: कबू होए बहे बड़ राजा
0: कबू पखारी नीच का साजा
1: कबू आपकी रत में आवे
0: कबू भला भला कहावे
1: जो प्रभ राखे तिवि ही रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: कबू होए पंडित करे विख्यान
0: कबू मोन तारी लावे ध्यान
1: कबू तट तीरथ स्नान
0: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कबू कीट हस्त पतंग होए जिया
0: अनक जोन पर में परमिया
1: नाना रूप ज्यो समागी दिखावे
0: जो परा पावे तिवे नचावे
1: जो तिस पावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर ना कोए
1: कबू साध संगत एहो पावे
0: उस स्थान ते बार न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास
0: उस स्थान का नहीं बनास
1: मन तन नाम रते इक रंग
0: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
1: ज्यो जल में जल आए खटाना
0: ज्यो ज्योति संग संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए बसराम
0: नानक प्रभु के साध करवान सलोक
1: सुखी बसे मसकीनिया
0: आप नवार तले बड़े

0: जब लग जाने मुझते कश होए,
1: तब इसको सुख नाही कोए,
0: जब जाने मैं किश करता,
1: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता,
0: जब तारे को बैरी मीत,
1: जब लग नीचर नाही चीत,
0: जब लग मोह मगन संग माए,
1: तब लग तार मराए रेस जाए,
0: प्रभ कृपा ते बंधन टूटे,
1: नानक हो छुटे,
0: सैस कटे लख को उठतावे,
1: आवे माया पाछे पावे,
0: अनक भोग विख्या के करे,
1: ना त्रिवतावे खपका मरे,
0: बिना संतोख नहीं को राजे,
1: सुखन मनोरथ व्यर्थे सब काजे,
0: नाम रंग सर्व सुख होए,
1: बड़भागी किसे प्राप्त होए,
0: कनक रावण आपे आप,
1: सदा सदा नानक हर जाप,
0: कनक रावण करने हार,
1: इसके हाथ कहां विचार,
0: जैसी दृश करे तैसा होए,
1: आपे आप, आप

0: आवे न जाए।
1: नानक सदही रहा समाए।
0: आप उपदेशे समझे आप।
1: आपे रचिया सबके साथ।
0: आपकी नो आपन विस्तार।
1: सबको सुखाओ करने हार।
0: उसते पेन कहो किश होए।
1: थान थनतर एके सोए।
0: अपने चलेताव करने हार।
1: कौते करे रंगे अपार।
0: मन में आप मन अपने माहे।
1: नाने कीमत कहन न जाए।
0: सत सत सत प्रभ स्वामी।
1: गुरु प्रसाद किने बखिया।

0: संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए,
1: संत के दुखी की पुजे ना आशा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: संत के दुख ना त्रिष्टे कोए,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए,
1: कया कीर्तन मेटे कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कट तिसके ओ करनहार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: प्रभु की उस्तत करो दिन रात,
0: तिया वो सास ग्रास,
1: सब कछ बरते तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा

0: तन मंत्र
1: प्रभु के सेवक सगल उधारन
0: प्रभु के सेवक दुख बसारन
1: आपे ही मेल लय कृपाल
0: सब जा पै निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे
0: जिसनु कृपा करे बड़ पाके
1: नाम जपत पावे बिसरान
0: नाम तिन पोर को उत्तम कर मान
1: जो किछ करे सो प्रभु के रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: सहस पाए होवे सो होए
0: करने हार पछाने सोए
1: प्रभु का किया धन मीठ लगाना
0: जैसा सांत ऐसा

0: अवर त्याग तो तिसे चितारे,
1: जो कछ करे सोई सुख मान,
0: भूला काहे फिरे अजान,
1: कौन बसताई तेरे संग,
0: लपटियो रस रूपी पतंग,
1: राम नाम जप हृदय माहे,
0: नानक पासे ती कर जाए,
1: जिस बखर को लैन तू आया,
0: राम नाम संतन कर पाया,
1: अज अभिमान लियो मन मोल,
0: राम नाम हृदय में तोल,
1: लाड के संते संग चाल,
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल,
1: तन तन कहे सब कोए, एहो व्यापार बिरला व्यापार,
0: नानक ताके सद बलिहारे,
1: चरण साध के तोय तोय पियो,
0: हर साध को अपना जियो,
1: साध की तूर करो इशनान,
0: साध ऊपर जाइए करवाना,
1: साध सेवा बड़ पागी पाइये,
0: साध संग हर कीर्तन गाइए।

0: राष्ट्रपति
1: अविनाशी ब्रह्मन में राख
0: मन की तो प्रीत त्याग
1: इसते परे नहीं किच कोए
0: सब नरंतर एको सोए
1: आपी बिना आपी दाना
0: गैर कबीर गहीर सजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद।

0: नाना विध कर बंत बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाई
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाओ
1: जब जीवे नानक हर नाम
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे

0: जिसे बजाए तिसे सब भली।
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई,
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई।
1: सत वचन साधु उपदेश,
0: जन जाके हृदय परमेश।
1: सत निरत बुझे दे कोए,
0: नाम जपता की गत हुए।
1: आप सत किया सब सत,
0: आपे जाने अपनी मित गत।
1: जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार,
0: अपना बूझ करत विचार।
1: करते की मित न जाने किया,
0: नानक ज्योत पावे।

0: नारायण नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने सांग
0: सेवक नाम के रंग
1: सेवक को प्रपालन हारा
0: राखे निरंकार
1: सो सेवक जिस दया प्रवतार है
0: सो सेवक सास सास समारे
1: अपने जन का पर्दा टाके
0: अपने सेवक की सर पर राखे
1: अपने दास को दे बढ़ाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आप

अंधकार दीपक परगासे तप्त माहे ठांड बरताई जन्म मरण के मिटे अंधे से भौतुका निर्भव होए बसे जिसका सातन कृपा तारी खित पाई चूके परम गवन निर्गुण अपसर गुण भी ओही।

0: आप कथे आप सुनने हार जाति पावे ता सृष्ट उपाय
1: अपने पाने लय समाए
0: तुम ते पिन नहीं किछ होए
1: अपन सु सब जगत परोए।

0: दर्शन पे कत उदर श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सब दर्शन सुंदर हर रूप
1: धन सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामे पर प्रधान
1: जिस मन बसे सोहोत निहाल
0: जाके निटना आवत का।

0: जिसे आप दिखाए
1: नानक जन जन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: कण कण व्याप रहा भगवंत
0: करन माहे आकाश पियाल
1: कर में
0: बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: आज्ञा तैसा कर्म।

0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: लाले रतन
0: संत कमावत होत उधार सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द अनाहद बाजय
1: आनंद करे प्रभु।

0: ती बानत पहन पहन तुम तुमरा लखा न जाए पसारा कह बज सदा प्रथम सुन एक रूपानुप स्वरूपा रंग खान बहुर रच फूल राया बैठा कहूं सिमट पर सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंप व्याद जुगाद स्वरूप सजम आबर छा मेरी तुम करो सिख
1: दुष्ट जिते
0: उठव तो सकल मिले करो रण का जे

गया तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास बोला जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु तिने ताप नुवार नहारा दुखंता सुखरास ताको विघ्न को लागे जाकी प्रभु आगे अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती पातशाह सिम प्रथम गौते सिमरक है गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होय सार दिन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण त्याय जे हिरठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे करण आउंदे आवे ताए सब थाई सदसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई सदसवें पातशाह की जोत धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दार दा ध्यान तर के बोलां जी पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां गुरमुखा नाम जपिया वण सिक्या दीक चलाई ते वाही दे के नट कीता तिना प्यारियां सारियां दी पुत्र कमाई वल ध्यान तर के बोलां जी जिन्हां सिंघां सिंघियां ने धर्म हे शीश दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरकड़ियां ते चड़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दे सेवा लई कुरबानी कीतियां धर्म ने हारिया सिखी केसां सुआसां संग निभाई तिन्हां दी पुत्र कमाई वल ध्यान तर के बोलां जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बोलना जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जित्या जित्या उनका सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रचिया रहा देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बुलबाले बोलना जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसरी दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुगटाल धर्म का जयकार बोलना जी सिखा दा मन नीवा मत उची मादा राखा वाहिगुरु अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारा गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान खालसा जी ने बख्शो जी ने माणिया दे माण नितानिया दे तान ने उटिया दी उट धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी बख्शिशां रहमतां कीतियां सतगुरु श्री पातशाह अमृत वेल तों आप जी हजूरी दवान सजाकर सजे हुए दवान श्री आसा जी वार दे कीर्तन अते सतगुरु श्री पातशाह जी समूह बीबियां भैणां ने मिल जुल के आप जी हजूरिंदर श्री सुखन साहब दे पाठ चौपई साहब के पाठ आनंद साहब के पाठ कीर्तन सतगुरु श्री पातशाह जी बाणी सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद हो बाणी पढ़ते हैं अनेक प्रकार की गलतियां भुला हो गई होनजाण बते जानक माफ करना को वास्ते सुते स्पष्ट बाणी पढ़न का बल बख्शना पढ़ी सुनी बाणी का भाव आई संगत के हिरदे विखे सुनाई संगत की हाजरी कदम लेखे लाउणी सतगुरु श्री पातशाह जी आप जी के चरण सेवक सतगुरु श्री पातशाह सरदार जरनैल सिंह बीबी बलवीर कौर जी सतगुरु श्री पातशाह

सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दर्शन प्यासे दिन फिर रात चितवन दिन नीत खोल कपट गुरु मेलिया नानक हर संग मीत सुख अटल गुरु सेवियन सह सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोहे महला चौथा जिथे हर अराधिए तिथे हर मित सहाय गुर कृपा ते हर मन वसै होर तबिद लया न जाय जिथे हर अराधिए तिथे हर मित सहाय गुर कृपा ते हर मन वसै होर तबिद लया न जाय हतन संचिए पाए जे हालत पालत हर होए सखाई रहा सत संगति संग हरदन खटिए होरत होरत उपाय हरदन।

कब को नाचे पांव पसारे, कब को हाथ पसारे, हाथ पाओ पसारत बिनव तिल लाग, तब लग मेरा मन राम समारे।

0: जय जयकारे सब कोए तां जय जयकारे सब कोए। ओ ऐसी भगत बन आई मेरा मन ऐसी भगत बन आई
1: ऐसी भगत बन आई मन ऐसी भगत बन आई।
0: हर बिन खिन पल रह ना सको
1: हर बिन खिन पल रह ना सको
0: हो हर बिन खिन पल रह ना सको
1: हर बिन खिन पल रह ना सको।
0: जैसे जाल बिन मीन मर जाई
1: जैसे जाल बिन मीन मर जाई

मेरा मन ऐसी भगत बने मेरा मन ऐसी भगत बने मेरा मन ऐसी भगत बने मेरा मन ऐसी

गोपघीन बुत बलखिन मोहे परदेश घूरते आई। नाहन दर्ब न जोबन माती मोहे अनाथ की करो सुमाई। खोजत खोज

दर्द इस ढूंढन जा देवन हार दाता प्रभु निमख ना मने बसा लालच झूठ विकार बहु